0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
2: High appreciation
3: In Dubai
4: You know how fans shout at football matches
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish Works in advertising too Because when you amplify your advertising using radio Your campaign is 49% more likely to get noticed See radio differently at radiocentre.org
6: Download the Leica Radio mobile app Listen live and listen back to your favorite shows. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Lester Miller is back.
4: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
3: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
4: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
0: Soothing you through the night and early morning. This is Laika Radio.

0: Like a Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ कथ

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम।

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी होशी।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख लख

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम, देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: क्या खूबसूरत गाना है रफी साहब की आवाज में, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गाना तो एक अवार्ड विनिंग सॉन्ग है, और इस गाने के लिए रफी साहब को अवार्ड क्यों नहीं मिला। लेकिन उसे उन्हें लोगों का प्यार जो मिलाना वही अवार्ड है। इतना खूबसूरत गाना है कि इस गाने को जब भी मैं सुनती हूँ इसमें बस डूब ही जाती हूँ, और मेरी उम्मीद है कि आप सबका भी हाल शायद ऐसा ही होगा। उम्मीद फिल्म से था ये गाना, जिसमें जॉय मुखर्जी और नंदा ने काम किया था, और उससे पहले आपने बप्पी दा का म्यूजिक सुना किशोर दा की आवाज में, नमक हलाल फिल्म का गाना। दो गीतों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, वीकेंड की शुरुआत हो गई है, सैटरडे की शुरुआत हो गई है। 10:14 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं हूं ऋतु शर्मा। सभी सुनने वालों को जो जहां कहीं भी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है आप सब चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और जीवन का भरपूर मजा ले रहे हैं। और आज ये मौसम वैसे इतना बुरा नहीं है जितना आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस हफ्ते गर्मी ज्यादा बढ़ सकती है। एनीवेज, बढ़ेगी तो क्या करें, कुछ चीजें हैं जो भगवान ने अपने हाथों में रखी हैं, और अच्छी ही बात है कि उनके हाथ में, क्योंकि अगर ये चीजें भी इंसान के हाथों में आ जाती तो न जाने क्या होता। एनीवेज, हम बढ़ते हैं आगे, और आपको बता दूं कि 1 बजे तक ऋतु शर्मा आपके साथ ही रहेगी, और हमेशा की तरह आपको एक से बढ़कर एक गाने सुनवाने की कोशिश करती रहेगी। थैंक यू सो मच, आपके ढेरों मैसेजेस मिले और जो बता रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं, तो बस ये साथ चलता रहेगा 1 बजे तक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए, और याद रखिए कि ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको कराना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch.

0: 1996 की मूवी पापा कहते हैं से था ये गाना, राजेश रोशन का म्यूजिक। और इस फिल्म में काम किया था जुगल हंसराज और साथ में थी इनके मयूरी कांगो। जुगल हंसराज जिन्हें आपने मासूम फिल्म में भी देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जो इतनी खूबसूरत एक्टिंग करता है कि अक्सर ही उसे याद करके, उस फिल्म को देखकर आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमाल की फिल्म थी। और आपको बता दें कि आज वही छोटा सा बच्चा जुगल हंसराज जिनका नाम है 53 इयर्स का हो गया है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आज जुगल हंसराज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने पापा कहते हैं फिल्म में तो काम किया ही था, लेकिन इसके अलावा कुछ और फिल्में उनकी आई हैं जो उनके करियर की यादगार फिल्में हैं। लेकिन अगर उनके साथ साथ आज आपका भी जन्मदिन है तो हमारी ओर से आपको भी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां। और आपके ढेरों मैसेजेस भी मिले हैं तो समय आ गया है कि उन पर एक नजर डाल ली जाए।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: तो भाई राजीव पटेल जी का कहना है कि क्या बात है, इतने अच्छे गाने सुना रही हो, क्या रसमलाई खा के आई हो या फिर आलू के पराठे? अरे सुबह सुबह ना तो कोई रसमलाई खाता है ना आलू के पराठे, बट मेरी विश है कि शाम को शायद मुझे मिल जाए, आपने याद दिलाए हैं तो। लेकिन थैंक यू, आपको गीत पसंद आ रहे हैं तो बस इससे खुशी की बात क्या है। थैंक यू साथ देने के लिए विनोद जी, बहुत धन्यवाद। हमारे संतोष जी, अर्जुन जी, गीता जी, जैस्मीन और सुरजीत जी कहते हैं कि मैं तो गार्डन में बैठ के आपके शो का मजा ले रहा हूँ। तो समर का यही मजा है कि गार्डन में बैठो, समय बिताओ और बड़ा अच्छा लगता है, रंग बिरंगे पक्षी दिखते हैं और हमारे गार्डन में तो बहुत सारे तोते भी आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। तो मजे के साथ अपना दिन की शुरुआत कर रहे हैं आप, जानकर अच्छा लगा सुरजीत जी। थैंक यू राजेश जी, साथ देने के लिए धन्यवाद। और कहते हैं कि अक्सर ही ऐसे गाने सुनने की ख्वाहिश रहती है जो अक्सर नहीं बजाए जाते हैं, तो देखते हैं आज इस शो में आपको कौन से नए गाने सुनने को मिलते हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत खुशी है जानकर। हरीश खत्री जी, किरण जी, मृदु जी एंड नरेंद्र बागिया जी, आपने लिखा है कि अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है आपने, कि गमों की धूप में कभी जाना ना पड़े, इन हंसी पलकों को कभी भिगोना ना पड़े, बिन मांगे ही मिल जाए खुशियां आपको इतनी कि फिर किसी दुआ के लिए सर झुकाना ना पड़े। कितनी अच्छी दुआ है और ये दुआ मैं आप सबके लिए मांगती हूँ, ये मेरी ओर से आप सबके लिए। थैंक यू गिरीश जी, आप भारत में हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं मैंने भोजन कर लिया है, अब आपके साथ जुड़ गया हूँ। हाँ वहाँ तो लंच टाइम हो गया होगा, तो बस मजे के साथ रिलैक्स कीजिए और यहाँ से बजने वाले गीतों को एंजॉय कीजिए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू गिरीश जी, अरुणा जी, मालती जी, महेंद्र बाजारिया जी। और इसके अलावा मैसेजेस की लिस्ट बहुत लंबी है जिन्हें मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल ये गाना आप सबके लिए।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: देखिए ये गाना आज तो मैंने आपको सुनवाया है, लेकिन मुझे पता है 2-3 दिनों बाद आप ये गाना खुद गाएंगे कि नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता गार्डन हमारा या घर हमारा, थोड़ी सी छाया बरसा। मौसम गर्म होने वाला है, लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरत है और इस गाने को डेडिकेट करती हूँ उन सभी के नाम पर जो रफी साहब के फैंस हैं, खासतौर पर हमारे विजय गुडूरी जी जो मॉरिशस से लौट कर आए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। तो एक बार फिर से लंदन में आपका स्वागत है और आज आपने भी हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार हमारे साथ शेयर किया है और उसमें लिखा है कि किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। बिल्कुल 100% सच बात आपने हमारे साथ शेयर की है और ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं। और आपके साथ साथ हमारी मालती जी प्रोग्राम सुन रही हैं, सलमा जी कैंट में है, वियाना में अनिल सोनी जी हैं, शेखर आनंद जी हैं, उल्लास टोरंटो में है, हंसा वोरा जी, मिसे शेख, भरत गंगाराम जी थैंक यू कहते हैं, नमस्कार जादू भरी आवाज क्या बात है, ये लाइन सुनकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है, थैंक यू भरत जी, सहर जी, दिनेश पोपर जी, हमारी प्यारी जासू जी एंड जितने भी साथी प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। और अगला गाना चलिए आप सबके लिए
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। ये है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो, अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क, दिस इज रितु शर्मा।

0: लता जी और शब्बीर कुमार की आवाजों में फिल्म वो सा दिन से लिया था ये गाना, और ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है। गिरीश जी मुझसे पूछ रहे हैं कि ये फिल्म आपने देखी है। जी हाँ, बिल्कुल देखी है, एक नहीं दो बार नहीं कईयों बार देखी है, और जब भी टीवी पर मुझे ये फिल्म मिल जाती है मैं देखने बैठ जाती हूँ, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप कहीं से भी देख लीजिए, पहले देखी होती है तो पता चल जाता है तो मजा आता है। इट वॉज ए लवली मूवी, मैंने बहुत इंजॉय की थी और आज भी करती हूँ। और इसके अलावा रक्षा जी किमी पटेल हमारे साथ है, थैंक यू हिमांशु पटेल जी कहते हैं शो में मजा आ रहा है, क्या बात है, थैंक यू तोची जी, जैस्मीन जी, रानी जी, महेंद्र बाजारिया जी, दिव्या जी, ज्योति जी, एंड ऑफकोर्स हमारी प्रज्ञा जी, सभी का स्वागत है शो में। और आपको बता दूं के प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में एक कंपटीशन भी है। जी हाँ, कंपटीशन भी है, और जिसमें मैं आपको दो टिकट्स देने वाली हूँ, और दो टिकट्स किसके मिलने वाले हैं ये मैं बताऊंगी आपको अभी नहीं, नेक्स्ट वाले आवर में। तो हमारा साथ देते रहिए और ध्यान से प्रोग्राम को सुनते रहिए।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: और कहीं हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो बस साउथ ओल्ड ट्रैवल को फोन मिलाइए, उनके पास दुबई जाने के लिए बहुत बढ़िया डील्स चल रही हैं। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ritu Sharma.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Leicester Miller is back,
5: and the stage is about to explode. Confirmed artist
4: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
5: Arts Council England.

0: जी, लता जी और मुकेश जी की आवाज में ये गाना आप सबने पसंद किया है और हमारे महेंद्र जी का कहना है कि मुकेश जी की आवाज सुनकर दिल खुश हो गया। तो चलिए, ये गाना हमने आप ही को डेडिकेट किया। संध्या भावसर हमारे साथ जुड़ी हैं और एक कंप्लेन आई है दीपक जी ने हेचन से की है और आपने लिखा है कि ऋतु आई हैव ए कंप्लेंट टू मेक। माय प्रॉब्लम इज दैट जब मैं आपकी आवाज सुनता हूँ तो मैं कुछ भी काम और नहीं कर पाता हूँ और जब तक मैं आपके शो से जुड़ा रहता हूँ मैं कहीं और भी नहीं जा पाता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो मैं यही कहूंगी कि आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, जब तक ये शो चल रहा है आप कहीं जाने की सोचिए भी मत, उसके बाद पूरा दिन पड़ा है, जहां मर्जी जाइए। और आई लव योर मैसेज, थैंक यू। इस तरह की कंप्लेंस तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आती ही रहे। ये सब आपका प्यार है कि आप इतनी प्यारी बातें और इतने प्यार से मेरा शो सुनते हैं, मैं क्या कहूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपको बता दूं कि जो गाने मैं बजा रही हूँ इसी तरह की और भी गाने आपको सुनवाने वाली हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में, क्योंकि अगले हिस्से में जानते हैं हम आज की यादें में किसे याद करने वाले हैं। जिसे याद करने वाले हैं ना, मैं जानती हूँ आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस है और उनका नाम है नंदा। यस, बहुत खूबसूरत गाने नंदा जी पर पिक्चराइज है। तो आज की यादें में हम उनके बारे में कुछ बातें करेंगे और सुनेंगे उन पर पिक्चराइज ढेर सारे गाने।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 97.95 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
6: Smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
7: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
6: Click Rifko Theatre .com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
8: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
12: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100. और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
1: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: उस जमाने में लोगों का दिल जीत लिया था। नंदा जी वैसे तो जनवरी में बॉर्न है, और जनवरी में बड़े टैलेंटेड लोगों का जन्म हुआ है, और नंदा जी भी जनवरी में ही बॉर्न हुई थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक फिल्मी परिवार में, और इनके पिता जो थे वो मास्टर विनायक एक मराठी सिनेमा के जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर थे, इसलिए फिल्मों में आने में नंदा जी को ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब मास्टर विनायक छोटी सी उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए तो नंदा जी केवल 8 साल की थी, और परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए नंदा जी को बचपन में ही एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना पड़ा, जिससे जो पैसे मिलते थे परिवार का घर परिवार का खर्चा चलता था। और जब छोटी सी नंदा फिल्मों में आई तो लोग उन्हें बेबी नंदा के नाम से जानते थे, और उस जमाने में उन्होंने कुछ मराठी नाटक, कुछ मराठी और कुछ हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया था। लेकिन आपको याद होगा एक फिल्म आई थी तूफान और दिया, इसे मैंने देखा है, मुझे दिखाई गई थी ये फिल्म अच्छी फिल्म थी, उसमें बहुत अच्छा मैसेज था। वी शांताराम की फिल्म थी जिसे काफी लोगों ने पसंद भी किया था, और इसमें नंदा आई थी काम करके, और इसमें उन्हें इतना पसंद किया गया कि कहने वाले कहते हैं कि इस फिल्म के बाद उनके करियर को एक नई दिशा मिली, और उसके बाद तो उन्होंने और भी फिल्में की। आपको पता होगा उनकी एक छोटी बहन फिल्म आई थी जिसका गाना आज भी जब रक्षाबंधन आता है तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ये गाना बना बजे त्योहार पूरा ही नहीं होता। ऐसी ही कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, बल्कि जब ये फिल्म आई थी ना छोटी बहन, उसके बाद तो वो एक छोटी आदर्श बहन के रूप में मजबूर हो गई थी। लेकिन बहन से हीरोइन तक का सफर कैसे तय किया नंदा जी ने, बताऊंगी आपको। लेकिन सबसे पहले ये बताऊं,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 128.3 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: We hit
3: Leica Radio.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0780-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes! It's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.

0: लता जी के आवाज में ब्यूटीफुल सा रोमांटिक सा गाना जो नंदा जी पर पिक्चराइज किया गया था.
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और जानते हैं जब ये फिल्म आई थी उस समय नंदा टॉप की एक्ट्रेस थी और शशि कपूर की शुरुआत की एक के बाद एक सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी. कोई भी बड़ी एक्ट्रेस उस जमाने में उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी. उन्हें लगता था कि अगर हमने इनके साथ फिल्म की तो हमारी भी कहीं ऐसा ना हो फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरू हो जाए. लेकिन नंदा जी ने बिना किसी झिझक के शशि कपूर के साथ दो फिल्में साइन की. चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथों में जैसी फिल्में साइन की और इसके बाद जब जब फूल खिले जो उस जमाने की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. और शशि कपूर ने हमेशा नंदा जी को अपनी फेवरेट हीरोइन बताया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नंदा नहीं होती, मेरे साथ फिल्म काम करने को तैयार नहीं होती तो शायद मेरा करियर ही नहीं बनता और मैं भी कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो चुका होता. आज हम नंदा जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका एक और बहुत ही सुंदर सा गीत सुनवाने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले आपको बता दें कंपटीशन के बारे में जो होगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में. लाइका रेडियो नेटवर्क, सिफत इवेंट्स और सोल जैम लंदन के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं ए नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा. ये होने जा रहा है एट हैरो आर्ट्स सेंटर ऑन थर्सडे 30th July at 7 PM. और आपको क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले आवर में बताऊंगी. लेकिन ये जरूर बता दूं कि अगर आप आज का कॉम्पिटिशन नहीं जीतते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है. आप टिकट्स बुक करा सकते हैं herroarts.com पर जाकर. टिकट प्राइस £25 है और जब आप लाइका रेडियो कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑनलाइन टिकट्स बुक करने पर. तो बस सारी डिटेल मैं आपको जरूर बताऊंगी और प्रोग्राम का अगला हिस्सा भी ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है आप बन जाएं हमारे आज के कंपटीशन के विनर और आपको मिल जाए दो टिकट्स वो भी बिल्कुल मुफ्त में.

0: देखिए शशि कपूर कितने सारे लोगों के हमारे लिसनर्स के फेवरेट एक्टर रहे हैं, और अगर नंदा जी उनके साथ फिल्म काम करने को तैयार नहीं होती तो शशि कपूर कैसे फिल्मों में आते और हमारे फेवरेट एक्टर कैसे बन पाते। नंदा जी इतनी बड़ी स्टार थी जब उन्होंने शशि कपूर के साथ काम किया, राजेश खन्ना के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हिट फिल्में दी हैं जिसका कि गीत मैं आपको ऑलरेडी सुनवा चुकी हूँ। इनफैक्ट उस जमाने के जितने भी बड़े हीरो थे सबकी हीरोइन बनकर आई हैं नंदा जी। ऐसा ही एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाने वाली हूँ आपको मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: बहुत ही खूबसूरत गाना जो सुनील दत्त और नंदा जी पर पिक्चराइज किया गया था। इन्होंने एक और फिल्म में काम किया था राजेश खन्ना के साथ जिसका नाम था इत्तफाक, और इसमें उनका ग्रे शेड वाला कैरेक्टर था। और जानते हैं इस फिल्म में कोई गाना ही नहीं था, लेकिन इस फिल्म में नंदा जी की एक्टिंग को बहुत सराहा गया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जब नंदा जी को लगा कि उन्हें मेन लीड रोल नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ऐसी भूमिकाएं नहीं मिल रही हैं जो वो डिजर्व करती हैं या जो वो करना चाहती हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे अभिनय से, फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और शांत जीवन जीना पसंद किया। जो उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि नंदा जी का जो निजी जीवन था, जो पर्सनल लाइफ थी, हमेशा बहुत शांत और विवादों से दूर रही। उन्होंने कभी शादी भी नहीं की, लेकिन 1992 में जब वो 50 की उम्र पार कर चुकी थी, उन्होंने मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई से एंगेजमेंट की थी, लेकिन दुर्भाग्य से सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक्सीडेंटल डेथ हो गई। और उसके बाद नंदा जी ने कभी किसी से शादी करने की या घर बसाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इस एक्सीडेंट ने उन्हें बहुत ही गहरा सदमा पहुंचाया। और उसके बाद वो बिल्कुल, कहते हैं, आइसोलेशन में चली गई, ना किसी से मिलना, ना किसी से बातें करना। एक और उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और पॉडकास्ट का जो नया टॉपिक है उसका नाम है रिइन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन, एप्पल एंड जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाकर। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio. City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
1: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
1: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
3: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist.
4: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
3: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
5: Leicester Miller is back,
6: and the stage is about

0: the energy and those proper live stage vibes.
1: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
0: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
1: Arts Council England.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
3: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
4: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लेक डिस्ट्रिक्ट, डेवन एंड कॉर्नवॉल, टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द नेदरलैंड्स, स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
5: Lyco Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
7: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ ये गाना है जिसने बहुत सारे साथियों का मन भारी कर दिया है, लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरत है और आज नंदा जी की यादें हो ये गाना ऋतु कैसे ना बजाए। ये गाना मैंने जरूर सुनवाना था, लेकिन जाते जाते आपका मूड हल्का करूंगी, एक और मस्ती भरा रोमांटिक गाना सुनवाऊंगी जो होगा आज की यादें का आखिरी गाना, जिसमें एक बार फिर से मुकेश जी की आवाज है और साथ दे रही हैं लता जी। लेकिन उससे पहले आप सभी को थैंक यू कहूंगी जिन्होंने ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं और आप सबका ये कहना है कि हमें आज के गाने आज की यादें बहुत पसंद आई, सो थैंक यू साथ देने के लिए। और याद रखिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक कॉम्पिटिशन भी है, इसलिए आज हम अपना 3 वर्ड्स गेम नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स जरूर सुनवाऊंगी। तो कंपटीशन के लिए तैयार रहिए, उसमें आपको क्या करना है और आप क्या जीतेंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से बताऊंगी, तो साथ देते रहिए। ये गाना होगा आज की यादें का आखिरी गाना, मिलते हैं आपसे न्यूज के उस पार।

0: यस, बैक टू बैक दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है और इस आवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आपको बताती चलूं, मैं हूं ऋतु शर्मा और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और नॉर्मली इस आवर में हम थ्रीवर्स गेम खेलते हैं और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी सुनते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन आज हम थ्रीवर्स गेम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इस आवर में होने वाला है एक कंपटीशन। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं बताती हूँ कि कंपटीशन क्या है क्योंकि अब हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, सिफत इवेंट्स और सोल जैम लंदन के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं अ नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। और ये होने जा रहा है एट हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30th July एट 7 PM। आपको क्या करना है, आपको लिख कर भेजना है वर्ड गजल, उसके साथ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस सही वाला, क्योंकि अगर आप आज विनर बनते हैं तो ईमेल के थ्रू ही आपको टिकट्स भेजे जाएंगे। तो ये सब कुछ आप फटाफट कर दीजिए, मैं नंबर आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जरूर याद दिलाऊंगी कि अगर आज आप कॉम्पिटिशन जीतते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप टिकट्स बुक कर सकते हैं herroarts.com पर जाकर। टिकट्स की प्राइस है £25 और जब आप लाइका रेडियो कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑनलाइन जब आप टिकट बुक कराते हैं। तो बस फटाफट भेज दीजिए जो जो मैंने आपसे मांगा है, लिखिए गजल, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। इस नंबर पर भिजवाइए अपना मैसेज। इस आवर के एंड में बताऊंगी कि कौन बने हैं लकी विनर, जिन्हें मिलेंगे 2 टिकट्स रंजीत रजवाड़ा को सुनने जाने के लिए।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg £7.49. Leela Medium Atta 10 kg just £3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg £24.99. Hira Butter Ghee 2 kg £10.99. And Falcon Paneer Box £8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for £1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for £3.99. Mido Yogurt 10 kg £8.99. Karela or Long Dudi £2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: नो नीड टू फ्लाई बैक होम दिस समर। Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure

0: लीजिए, लता जी की आवाज में रजिया सुल्तान फिल्म से लिया था ये गाना, जो हेमा मालिनी की फिल्म है। और आप जानते हैं कि हेमा मालिनी इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। और मनीषा शाह का कहना है कि कुकिंग करते करते इस गाने को मैं फुल वॉल्यूम पर सुन रही हूँ। क्या बात है, ये गाना है ही ऐसा, मुझे भी बड़ा पसंद है, इसीलिए आज प्रोग्राम में इसे शामिल किया और आप सबने पसंद किया। सो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क,
1: ये है लाइका रेडियो।
0: जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी। और आप सब सुनी रहे हैं कि दिवाली स्टोरी जो है एक म्यूजिकल है, जो रॉयल एल्बर्ट हॉल में सोल्ड आउट इवेंट होने के बाद अब फिर से होने जा रहा है। और अब की बार ये हो रहा है ओवो अरीना वेम्बली में ऑन 27 सितंबर। स्टूडेंट्स के लिए प्री शो होगा शाम को 5 बजे से 5:45 तक, और मेन शो होगा शाम को 6:15 से 9:30 PM तक। सनातन इवेंट्स के फाउंडर नितिन पालन MBE द्वारा निर्मित और बॉलीवुड डांस स्कूल टीम की कोरियोग्राफी से सजे इस इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले दिवाली स्टोरी को 7 स्पेशल गानों के साउंड ट्रैक और एक पूरी इंटरनेशनल आर्टिस्ट की टीम के साथ स्टेज पर जीवंत किया जाएगा। आप इसके टिकट्स बुक करा सकते हैं, और टिकट्स बुक कराने के लिए आपको विजिट करना है www.diwalistory.com पर।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो गीता जी कह रही है कि ऋतु मैंने 3 वर्ड्स मिस कर दिए। तो गीता जी आप पकड़ी गई कि आपने शुरू से नहीं सुना है, क्योंकि आज हम 3 वर्ड्स गेम नहीं खेल रहे हैं आज, क्योंकि इस वाले आवर में एक कंपटीशन चल रहा है। बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, इस वाले आवर के एंड में बताऊंगी कि इस कॉम्पिटिशन के विनर कौन बने हैं। लेकिन फिलहाल शुरू करने जा रही हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाती हूँ पहला गाना लता जी की आवाज में आप सबकी फेवरेट फिल्म से।

0: लता जी के आवाज में अनाड़ी फिल्म से था ये गाना जिसे आपने अभी सुना आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन से।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: शंकर जयकिशन का म्यूजिक था इस गाने में। और अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना।
1: This is Ritu Sharma.
0: तो आपको बता दें कि माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपने बच्चों को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए ये सुनिश्चित करें कि उसके सभी बचपन के टीके यानी कि वैक्सीनेशन समय पर लग चुके हैं। टीके आपके बच्चे को खसरा और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारी कम्युनिटीज में आसानी से फैल सकती हैं। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर वर्ष 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर की लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो भी आप अपने GP से संपर्क कर सकते हैं, उसका वो छूटा हुआ टीकाकरण पूरा करवा सकते हैं। क्या आपके बच्चे के सभी टीके समय पर लग चुके हैं? अपने बच्चों की रेड बुक में देखिए या फिर अपने GP प्रैक्टिस से बात कीजिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर।
1: This is Ritu Sharma.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: लीजिए, ओपी नैयर के म्यूजिक पर था ये गाना नया दौर फिल्म से, और आप सबको ये गाना पसंद आया है तो चलिए थैंक यू साथ देने के लिए। और अब एक गाना और बजाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि आज के कंपटीशन को किसने जीता है।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथहोल ट्रैवल।
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हॉलिडे पर जाने की सोच रहे हैं तो दुबई चले जाइए। साउथहोल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए क्योंकि दुबई के लिए बहुत बढ़िया डील्स चल रही हैं। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ।

0: जी पर हमें तो अब जुदा होना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का एंड समय पास आ रहा है। और जाने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आज के हमारे इस कॉम्पिटिशन को किन्होंने जीता है, लेकिन जो नहीं जीत पाए हैं उनको फिर से याद दिला दूं कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ से और शोज में कॉम्पिटिशन चालू है, कंटिन्यू है, आप हमारा साथ देते रहिए, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी शो में कॉम्पिटिशन जीतने का मौका मिल जाए। और आप टिकट्स बुक करा सकते हैं hairoarts.com जाकर। टिकट्स प्राइस £25 है, लेकिन जब आप लाइका रेडियो कोड यूज करते हैं तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आज जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन को जीता है उनका नाम है हिमांशु पटेल। बहुत बहुत बधाई आपको, आप बने हैं हमारे आज के इस कॉम्पिटिशन के विनर। आप जा रहे हैं किसी एक के साथ रंजीत रजवाड़ा को सुनने के लिए और आपको टिकट्स ईमेल के थ्रू सेंड किए जाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, शो देखकर आइए और फिर हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So, आज जो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So Gold Rate is 97.9 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
0: तो बस अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार आज आपका साथ देंगी लाइका गोल्ड पर 1-4 शाइनी शीना। 1-4 आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाएंगी और लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आज आपके साथ होंगी फजीला, 1-4 आपके साथ रहेंगी और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी आनंदी आपके साथ। तो जो करना है करते रहिए, मजे के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, गीतों को एंजॉय करते रहिए। कल आपसे मैं फिर से मिलूंगी आज के शो में। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर इस शो को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लिसन बैक पर जाकर अपने कन्वीनियंट टाइम पर कभी भी इस शो को दोबारा सुन सकते हैं। कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।
4: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा, मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।
3: दिस इज लाइका रेडियो।
5: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमंत्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट्स बुक करें dmontforthall.co.uk
6: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 07860-280-655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
2: स्टार्ट

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड Alexa प्ले लाइका गोल्ड 2। सेवन स्टेशंस, वन पॉडकास्ट, वन मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales@leicamedia.co.uk.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
5: व्हेन यू नोटिस समथिंग रॉन्ग, इट टेंड्स टू ग्रो एंड इवेंचुअली टेक ओवर टू द पॉइंट यू कांट रियली थिंक of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you

गुड आफ्टरनून, बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और मुझे उम्मीद है इंजॉय भी किए होंगे। मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी सैटरडे एंड संडे बिटवीन द आवर्स ऑफ 4 एंड 7 आप

0: 1983 and then Karma mein 1986 mein as a child artist aaye the and Sultanat mein he featured as a model for TV and print as a child and appeared in notable campaigns and he made his acting debut as an एडल्ट कौन सी फिल्म थी वो आ गले लग जा 1994 की फिल्म थी एंड सलाम नमस्ते में कभी खुशी कभी गम मोहब्बतें ऐसी बहुत सी फिल्मों में काम किया पर इनका वो गाना था ना लकड़ी की काठी वो बहुत पसंद किया जाता है बहुत प्यारी लिखती थी उर्मिला मातोंडकर भी एंड जुगल हंसराज दोनों पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था मासूम के लिए वो गीत मैंने नहीं शामिल किया लेकिन सल्तनत 1986 की फिल्म थी ये गाना उन पर पिक्चराइज नहीं हुआ था लेकिन ही वॉज इन दैट फिल्म सो उन्हें हम एडवांस में ही बहुत बहुत बधाई देते हैं हाउ आर यू टुडे आई होप यू आर वेल जहां भी रहें खुश रहें खैरियत से रहें जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें अगर किसी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो चेयर अप लाइफ इज़ टू लिव लाइफ इज़ टू इन्जॉय जी और शान से मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो ट्राई करती हूँ चुन चुन कर मैं आप तक पहुँचा दूँ उम्मीद करती हूँ ये दोनों गीत आपको पसंद आए मेरे साथी जो ऑलरेडी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने होने का प्रमाण उन्होंने दे दिया है यानी कि अपने होने का एहसास दिला दिया है उन सबका मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हम
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, your £1 in British sterling can get you up to 128 rupees and 30 paisas. Wow. And aapko pata hai na ki you can exchange money in branch online or SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kg. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A, Syston Street West, Leicester, LE1-2JU and 2A, Rollout Sill, Leicester, LE5-4UN.
3: Leicester Mela is back.
4: And the stage is about to explode.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: बहुत प्यारा गीत था एंड जब जब भी मैं इस गीत को सुनती हूँ एंड मैं गुनगुनाती हूँ साथ साथ एंड आई रियली लव द वे रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया. बता दें कि विश्वजीत एंड माला सिन्हा पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था. महेंद्र बरजारिया जी साउथ हैरो से आपने मुझे मैसेज लिखा और आपने कहा कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी लगती है, सारे गाने बहुत अच्छे हैं. ये गाना एक्चुअली आपने भी लिख कर भेजा कि माला सिन्हा और विश्वजीत पर ये गाना पिक्चराइज हुआ. थैंक यू एवर सो मच. और मेरे सभी साथी जो मैसेजेस भेज रहे हैं, thank you.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: देखे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: भई आपने बिल्कुल सही पहचान लिया कि आज के गीतों में कौन सा वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा है. थैंक यू एवर सो मच. और अगला गीत 90s की फिल्म का, लेकिन इस गीत के बिना तो फिर अधूरा सा रह जाएगा. और सबकी फरमाइश भी है कि ये गीत प्ले होना चाहिए. कौन सा हो सकता है? याद कीजिए, किरण वाला.
3: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: Pata chal gaya na? Kis geet ki baat kar rahi hu? Yes, Dar. Kiran, Shah Rukh Khan ki film. Bahut pyari film thi. Juhi Chawla thi is film ki heroine. तो नज़र पर आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं जो मैंने चुने, या आपकी हटकर है कुछ पसंद, बता दीजिए.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: A pound in your pocket can get you Indian rupees 128.66, Pakistani rupees 370.34, Sri Lankan rupees 447.89, Bangladeshi taka 164.49, Afghan Afghanis 87.93 and US dollars 1.33.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Right, आज गोल्ड का रेट है 97 pounds and 95 pence per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116 332 0262 or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner Leica Radio.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: प्यार हुआ बदनाम, ये था फिल्म का नाम। इस फिल्म का गीत आपने कुमार सानू की आवाज में सुना। इसके दो वर्जन है, एक साधना सरगम ने गाया और एक कुमार सानू ने, और मुझे ये गीत काफी पसंद है। तो मुझे उम्मीद है मेरी पसंद आपकी पसंद जरूर बनी होगी और आपने गीत को इंजॉय किया। मेरे साथ ही अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहिएगा। और अब हम पहुंचेंगे न्यूज़ के बिल्कुल करीब। न्यूज़ के उस पार मैं सरिता बी आर चोपड़ा जी को याद करेंगे नेक्स्ट आवर में, लेकिन पहले दो गीत उनकी फिल्मों के नहीं होंगे। आइए बढ़ते हैं न्यूज़ की।
1: Across the Midlands, this is Leica Radio on DAB and online.
2: A part of the Leica Radio Network.
3: Top stories this hour. More than 200,000 people in France and Spain have been forced to flee rapidly spreading wildfires. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has warned, although a change in wind direction has helped firefighters who are battling flames near Madrid, conditions may suddenly change. In France, people have been evacuated from homes in the suburbs of Bordeaux. Regional official Sophie Broca says significant help is on its way.
4: This fire that we've been living with and fighting against here in Gironde for 3 days has reached an unprecedented magnitude. To combat it, we will receive extremely significant national reinforcements.
3: Meanwhile, residents in a village in the Cairngorms say a raging wildfire has left them angry, upset and frustrated. Hundreds of residents have been moved out of Nethy Bridge after evacuation orders were issued. Smoke's now thought to be blowing towards Aberdeenshire and the North Sea. Kinley Francis owns a tour company in Orkney.
5: We could see the smoke 4.5, maybe 5 miles away from where we are. It is significant, the impact that had on the area. This is something of a, it looks like an apocalyptic scale. I just hope that the government can do their best to help these people up here.
3: Two teenagers have been arrested on suspicion of murdering a 17-year-old boy who was stabbed to death in Luton yesterday. Police say two boys were first arrested on suspicion of violent disorder and then rearrested on suspicion of murder. A 14-year-old boy is helping police with their inquiries after a hoax threat was made against an aircraft travelling to Manchester Airport. RAF Typhoons were scrambled to intercept the Qatar Airways flight last night. Youth protesters in India have agreed to end their demonstrations after talks with the government. The self-styled cockroach movement was triggered by an exam leak scandal. And letters from a young Morrissey are expected to fetch up to £22,000 at auction. In one, he claims he was always a genius, but nobody listened. From Sky News, I'm Ruth McKee.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: अभी बहुत गर्मी है लंदन और आसपास के इलाकों में। मैक्सिमम टेम्परेचर 28, सनी इंटरवल्स एंड जेंटल ब्रीज एंड लो विल बी 18 एंड इन मैनचेस्टर ठीक ठीक है 19 डिग्री है टेम्परेचर, लाइट रेन्स एंड शावर्स भी है वहाँ एंड जेंटल ब्रीज भी चल रही है। एंड मिडलैंड में लाइट क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स, मैक्सिमम 26 एंड लो विल बी 14 डिग्री सेल्सियस। अपने दिल का मौसम अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands.
0: जी हाँ, प्रोग्राम के सेकंड आवर में हमने कदम रखा है। प्रोग्राम के इस आवर के पहले दो गाने मैंने उन फिल्मों से चुने हैं जो आज ही के दिन रिलीज हुई, और फिर हम बी आर चोपड़ा जी को याद करेंगे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, जिन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, उनमें से खुद चुने चुने गीत आप तक पहुँचाऊंगी।
1: Leica Radio. Leica Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Sabharwal.

क्या बात है, किशोरदा की आवाज में आपने ये गीत सुना फ्रॉम द फिल्म धर्मात्मा। ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 25th of July 1975। फिरोज खान साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस भी किया था एंड ही एक्टेड इन द फिल्म एज वेल। हीरोइन थी इनकी हेमा मालिनी, साथ में रेखा भी थी एंड नासिर हुसैन, प्रेम नाथ, बहुत सारे एक्टर्स थे। बहुत प्यारी फिल्म थी, फिल्म का संगीत भी बहुत ज़बरदस्त कल्याण जी आनंद जी का, और सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे। ख़ास तौर पर ये गाना तेरे चेहरे में वो जादू है एंड मेरी गलियों से लोगों की यारी, वो गाना भी बहुत पसंद किया गया एंड देन क्या खूब लगती हो, वो गाना भी बहुत प्यारा था। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, सवाल जवाब थे, वो भी गाना बहुत खूबसूरत था और गीत लिखे थे इंदिवर साहब ने। ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई 1975, लेकिन जिस गीत से मैंने आज के सेकेंड आवर का आगाज़ किया वो फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज हुई बट 1990 में, 25th of July 1990 में आई थी फिल्म शेषनाग। इस फिल्म को के आर रेड्डी ने डायरेक्ट किया था एंड इस फिल्म में काम किया था। जितेंद्र ने, ऋषि कपूर, रेखा, माधवी एंड मंदाकिनी थी इस फिल्म का हिस्सा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत आपने सुना, बहुत प्यारा सा गीत, और गीत में आवाज़ किसकी थी, आसमानी भेजा जमीन पर, सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें थी। आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे इस फिल्म के गीत। इसी फिल्म में और भी गाने थे बहुत अच्छे अच्छे, ओ मेरे दुश्मन, छेड़ मिलन के गीत, मितवा, तेरे हाथ ना छोड़ूंगी, ये गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था। सो उम्मीद करती हूँ मेरे पसंदीदा दो गाने आपको भी पसंद आए। मेरे वो साथी जो बहुत सारे मैसेजेस लिखकर भेजे और एवरी सॉन्ग के बाद मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। संध्या जी, आपके पति देव ठीक नहीं हैं एंड हितेन जी के लिए मैं यही प्रे करती हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। उमेश जी धन्यवाद। साहिद साहब, आपने लेस्टर से मुझे मैसेज भेजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैस्मिन भारती, नरेन कैंट एंड अमिता जी, सोहिनी रावल जी, मिसेस शेख आप भी सुन रही हैं एंड आप कौन हैं, कभी कभी आपके नाम नहीं आते हैं तो फिर मेरे को वो थे हरजिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम। इंतशाब, हंसा वोरा जी, अर्जन जी, संतोष जी, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, उल्लास इन टोरंटो, सहर, विमल रायन जी, आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और भी बहुत सारे नाम है, विजय गनोवा जी, आप सबका धन्यवाद। अब दो गानों में से मैं चुन नहीं पा रही हूँ कि कौन सा गीत प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अब इस आवर के बाकी गीत मैंने बी आर इशारा जी की कुछ फिल्मों से चुने हैं। बी आर इशारा फिल्म मेकर थे और आज उनकी पुण्यतिथि है, 25th of July 2012 में एट एज ऑफ 77 ही पास्ड अवे एंड हिज फुल नेम वॉज बाबू राम इशारा, लेकिन बी आर इशारा के नाम से जाने जाते थे एंड बॉर्न एज रोशन लाल शर्मा। तो उनकी कुछ एक फिल्मों के गीत मैंने चुने हैं। तो एक फिल्म थी एक नज़र, जिसमें अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन ने काम किया था एंड बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी वो फिल्म। उस फिल्म के दो गीत मुझे पसंद

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मेरे बहुत से साथियों को ये गीत बहुत प्यारा लगा. बहुत दिनों बाद सुना है इस गीत को. बी आर इशारा जी को याद किया हमने इस गीत के जरिए. बी आर इशारा वॉज द ट्रेल ब्लेजर ऑफ इंडियन सिनेमा हु इज नोन फॉर हिज फिल्म टेकिंग द इश्यूज दैट आर अदरवाइज एब्सेंट इन मेन स्ट्रीम सिनेमा. सो उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो बहुत बोल्ड थी. उन्हीं में से एक फिल्म थी चेतना, जिसका गीत आपने अभी अभी सुना. एंड इनके बहुत से ऐसे सोशल इश्यूज़ को लेकर भी जो टैबू सब्जेक्ट होते हैं उन पर उन्होंने फिल्में बनाई, लाइक चेतना, एक नज़र, ज़रूरत, मिलाप. सारे गाने बहुत अच्छे उन सभी फिल्मों के. बी आर इशारा वॉज बॉर्न एज रोशन लाल शर्मा ऑन सितंबर द 7th 1934 इन हिमाचल प्रदेश एंड हिज निक नेम वॉज बाबू विच ही यूज वेन ही बिकेम अ फिल्म मेकर. तो बाबू राम उनका असली नाम था. तो बाबू राम, बाबू उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, निक नेम था उनका. तो उन्होंने वही नाम रखा अपना फिल्मों के लिए भी. और ये भी बता दूं कि वो घर से दौड़ कर गए थे बॉम्बे, क्योंकि वो फिल्म मेकर बनना चाहते थे. इन बॉम्बे ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज ए स्पॉट बॉय एंड ही देन मेट द लिरिसिस्ट कमर जलालाबादी जी. उनके साथ उनको असिस्ट भी करते रहे एंड इवन गेव हिम अ प्लेस टू स्टे. उन्होंने अपने पास रखा एंड वाइल विद कमर जलालाबादी ही स्टार्टेड राइटिंग टू. और फिर इन्होंने स्टोरीज लिखना शुरू किया. ही असिस्टेड मैनी राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, मोस्ट नोटेबली बासु भट्टाचार्य जी इन तीसरी कसम इन 1967 एंड मेड हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द स्मॉल फिल्म आवारा बादल इन 1964. और उसके बाद ही देन रोट द डायलॉग्स ऑफ फिल्म्स लाइक चांद और सूरज, स्पाई इन रोम एंड धरती कहे पुकार के. धरती कहे पुकार के भी दो गीत हैं जिसमें से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद आएगा. जी हम तुम चोरी से वो गाना काफ़ी मशहूर हुआ था मुकेश अनलता जी की आवाज़ों में. और दूसरा गीत था जारी कारी बदरा बलमा के द्वार, वो गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था, लता जी ने गाया. इन दोनों गीतों की भी चॉइस दे रही हूँ. वैसे आपने जो गीत बहुत पसंद किया है फिल्म एक नज़र का, वो है बी पत्ता पत्ता. अभी भी आप अगर वोट देना चाहते हैं तो वोट दे सकते हैं, बता सकते हैं कि पत्ता पत्ता आपको ज़्यादा पसंद है या फिर द टाइटल ट्रैक एक नज़र. जल्दी से मुझे लिखकर बता दें.
0: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो
2: एंड दिस इज फ्रॉम द फिल्म मिलाप.

0: राज किरण और सारिका पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। बहुत प्यारी फिल्म थी जिसका नाम था कागज़ की नाव। 1975 में बनाई थी ये फिल्म बी आर इशारा जी ने, और उस फिल्म का ये गीत मैंने आप तक पहुंचाया। आइए आप आगे बढ़ लें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today Indian rupees 128.67, Pakistani rupees 370.36, Sri Lankan rupee 447.91, Bangladeshi taka 164.50, Afghani 87.95 and US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: And gold ka rate is what market mein chal raha hai, £97.95 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica
0: Radio. भी एक नज़र का गीत जो मेरे ज़्यादातर लिसनर्स ने लिखा है कि साथियों ने कहा है कि वो गीत प्रोग्राम में शामिल हो, तो वो गीत मैं शामिल करने जा रही हूँ अब। एंड द सॉन्ग इज़ कॉल्ड पत्ता पत्ता बूटा बूटा। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। बी आर इशारा जी ने ये फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एक नज़र। आपने देखी थी ये फिल्म? अगर देखी थी तो आपको याद है कि आपको पसंद आई थी ये फिल्म या नहीं पसंद आई थी। इसमें इसे डायरेक्ट एंड इसकी स्टोरी भी लिखी थी बी आर इशारा साहब ने, एंड म्यूज़िक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गाने सारे अच्छे थे लेकिन ये गाना काफ़ी मशहूर हुआ था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। पहले 100 बार इधर और उधर देखा, वो भी गाना बहुत खूबसूरत था इस फिल्म का। एंड हम ही करें कोई सूरत उन्हें भुलाने की, उन्हें तो आदत है भूल जाने की, समथिंग लाइक दैट। तो अनलेस आई सिंग, मुझे याद नहीं रहता कि वर्डिंग्स क्या हैं, लेकिन जैसे ही गाना शुरू करो तो फिर आ जाते हैं अपने आप। सो आपको पसंद आएगा ये गीत, एंड इस गीत के साथ साथ आप गुनगुनाना चाहें तो जरूर गुनगुनाइएगा।
2: Hey there, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, मोहम्मद रफी साहब एंड लता जी की आवाज एंड अमिताभ बच्चन एंड जया जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप सबने एंजॉय किया। जिन्होंने भी इस गीत को वोट दिए उन सबका मैं थैंक्स करना चाहूंगी। जैस्मिन नरेन कैंटी आप सभी सुन रहे हैं, दिव्या हैरोसे एंड महेंद्र बरजारिया जी, इंतशाब हंसा वोरा जी उल्लास टोरोंटो से, बहुत लंबी लिस्ट है सहर, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। तो मैं बी आर इशारा साहब के लिए इतना जरूर कहूंगी, बताऊंगी आपको कि बी आर इशारा वॉज नॉट जस्ट अ फिल्म मेकर, ही वॉज अ मेंटोर हु हैड एन आई फॉर टैलेंट एंड ही इंट्रोड्यूस एंड ऑल्सो नर्चर्ड सेवरल न्यू कमर्स हु वुड गो ऑन टू बिकम स्टार्स एंड इंडियन सिनेमा को उन्होंने नोटेबल एक्टिंग में एक्टिंग करवाई उन सभी से, लाइक प्रवीण बॉबी, बापी लहरी, डैनी डेंसन गप्पा, राकेश पांडे, विजय अरोड़ा, जया भादुरी यस एंड अमिताभ बच्चन, रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, राज किरण एंड रजा मुराद। एंड इन 1984 में बी आर इशारा साहब ने रेहाना सुल्तान से शादी की थी, जिन जो कि उनकी चेतना फिल्म की हीरोइन थी एंड ही पास्ड अवे आज ही के दिन 25th ऑफ जुलाई इन 2012 एंड इन मुंबई, लीविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ फिल्म्स दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर फिल्म मेकर्स एंड ऑडियंस अलाइक। So, बस यहीं तक, और नेक्स्ट आवर में जी एस कोहली जी को हम याद करने जा रहे हैं। सुनते रहिए, साथ दीजिएगा।
1: लिस्ट अप, स्टॉक अप एंड सेव एट फाल्कन कैश एंड कैरी। फाल्कन चक्की आटा 10 kg 749, लेला मीडियम आटा 10 kg जस्ट 399, दिशा एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस 20 kg 24.99, हीरा बटर घी 2 kg 10.99 एंड फाल्कन पनीर बॉक्स 8.99। गेट फाल्कन केसर मैंगो पल्प फॉर 149, टाटा सॉल्ट फॉर 69p, किसान हॉट एंड स्पाइसी सॉस फॉर 99p एंड 2 फाल्कन रेड लेंटल्स 1.5 kg फॉर 3.99, मिडो योगर्ट 10 kg 8.99, करेला और लॉन्ग दूधी 2.99 पर किलो। ऑफर्स वैलिड फ्रॉम 6th जुलाई टू 2nd अगस्त एट फाल्कन कैश एंड कैरी, 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट, लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल, लिस्टर LE54UN।
2: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
3: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
2: Click Rifko Theatre .com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
4: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
7: Leicester Mela is back.
8: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
7: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
8: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
7: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
8: Arts Council England.
9: New hits on Leica Radio.

0: क्या बात है, दोनों गीत बहुत खूबसूरत थे। पहला गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म सपने साजन के, इन 1992 में आई थी ये फिल्म। एंड सपने साजन के एक्चुअली आज नहीं कल यानी 24th of July 1992 में रिलीज हुई थी, जिसमें काम किया था करिश्मा कपूर ने, साथ में थे राहुल रॉय, लॉरेंस डिसूजा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, नदीम श्रवण का संगीत था और समीर ने लिखा था वो प्यारा सा गीत जिसे आपने सुना था, मुकुल अग्रवाल एंड अलका याग्निक की आवाज़ों में। एंड फिल्म का नाम मैंने बता दिया आपको, सपने साजन के। और कल ही के दिन यानी 24th of July 1981 में आई थी कलयुग भी, एंड 1981 में ही कल के दिन रिलीज हुई थी धनवान। धनवान जिसमें राजेश खन्ना और शबाना आजमी थे, सुरिंदर मोहन ने इसे डायरेक्ट किया था एंड हृदयनाथ मंगेशकर और कुछ और साथियों ने इसे इसका संगीत तैयार किया था एंड साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे थे गीतों के बोल। सो उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। अब ड्रीम गर्ल, यस, हेमा मालिनी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। वेल, दो गीतों में से वैसे हमारी इंतशा एक बहुत प्यारा गीत सुनना चाहती थी, प्रेम नगर का। अनफॉर्चुनेटली वो गीत मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको चॉइस देती हूँ दो गीतों की। फिल्म वारिस 1969 में आई थी ये फिल्म, उस फिल्म का एक गीत है लता मंगेशकर एंड रफ़ी साहब का गाया हुआ, कभी कभी ऐसा भी। एक तो ये गीत और दूसरा गीत है अभिनेत्री फिल्म का, 1970 में आई थी ये फिल्म और ये भी लता जी ने गाया और सादिया किशोरदा ने, सारे गामा पा वाला गाना। कौन सा गीत आपको ज्यादा पसंद है, जल्दी से अपने वोट से, यू गॉट अबाउट 2 मिनट्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बहुत काम आसान है। You can go to the bank और online या फिर app के जरिए कर सकते हैं। अगर आपने SBI UK का download किया हुआ है app तो घर बैठे आप ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। और आज आपको एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले क्या मिल सकता है, 128 rupees and 30 paisa. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon.

0: फिल्म वारिस से चुना था मैंने इस गीत को। हेमा मालिनी जी ने इतनी सारी फिल्मों में काम किया, इतने प्यारे प्यारे गीत हैं, तो ये गीत मुझे लगा कि थोड़ा रेयर है, ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। इंतशाब आपकी पसंद मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी किसी और दिन, लेकिन आज आपको निराशा मिली, बट डोंट वरी। आंटी जी अभी अभी आई हैं, थैंक यू सो मच। हना आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहिए इसी तरह से। विमल रायन जी एंड किशोर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगतार जी आप सुन रहे हैं वैंकूवर में प्रोग्राम, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। आइए अब जीएस कोहली जी की फिल्म के गीत कुछ एक मैंने चुने हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। जीएस कोहली साहब के बारे में शायद आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। जीएस कोहली इज़ बेस्ट नोन फॉर सॉन्ग्स लाइक तुमको पिया दिल दिया, याद है शिकारी का गाना, मांगी हैं दुआएं हमने सनम, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, अपनी आंचल की ज़रा मुझको हवा दे दो, एंड माना मेरे हसीन सनम, सारे गाने बहुत खूबसूरत, प्यार के दामन से लिपटे ऐसे गीत इन्होंने कंपोज किए। एंड इनका पूरा नाम था गुरशरण सिंह कोहली, नोन एज जी एस कोहली, वॉज बॉर्न इन 1928 इन पंजाब, और सिख पंजाबी सिख फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। अर्ली ईयर्स में इंडस्ट्री में आए ये और असिस्टेंट के तौर पर काम किया लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब के साथ, एंड उसके बाद फिर इन्होंने अपने अलग से म्यूजिक देना शुरू किया। इन 1960 जी एस कोहली उनकी डेब्यू जो थी इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म थी विद कृष्ण मलिक्स लो बजट लंबे हाथ। लंबे हाथ का गीत मैं प्ले करना चाहती थी लेकिन आज ही हमारे यहाँ से ये गीत प्ले हुआ है इसलिए मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। वो गाना बड़ा क्लासिक हिट गाना है, द फिल्म हैड द फेमस नंबर प्यार की राह दिखा दुनिया को, बहुत प्यारा गीत है। एंड हिज नेक्स्ट वॉज जीपीसीपी की फिल्म थी मिस्टर इंडिया इन 1962, और इसमें गीता बाली थी, आई एस जोहर थे, हेलन थे, कमल जी थे, एंड द फिल्म हैड अ फ्यू फेमस सॉन्ग्स लाइक मत पूछ मेरा है कौन वतन, ऐसे गाने थी, और आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट सॉन्ग एनीवे। और इसके इस बाद शिकारी के गाने बहुत फेमस हुए, तो शिकारी के तुमको पिया ये दिल दिया और अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, इन दोनों गीतों में से मैंने चुनना था एक गाना और मैंने चुन लिया है, तो सुना दूं आपको।
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: And I love this song. Mujhe umeed hai ki aap bhi meri pasand ko pasand karenge aur saath saath gungunayenge zarur। लता जी एंड रफी साहब की आवाज़ें।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: राइट भी गीत आपने सुना और बहुत पसंद किया, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और अब मैं अपने सभी सुनने वालों को कुछ बताना चाहता हूँ।
0: ये है लाइका रेडियो।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है और उम्मीद करती हूँ कि लाउड एंड क्लियर ये आवाज आप सब तक पहुंच रही है। और जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी, द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल एल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो Wembley Arena on Sunday, 27th of September. A student pre-show takes place from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main event from 6:15 to 9:30 p.m. And created by Sanatan Events, founder hai jiske Nitin Palan MBE, and featuring choreography from the Bollywood Dance School team jo hai unki choreography. And the English language production brings like Ramayana to life with four chapters, a bespoke seven-song soundtrack and a full international cast. So, ज्यादा जानकारी के लिए आप diwalistory.com पर जाइए and अपनी tickets भी book करा लीजिएगा.
0: This is Leica Radio across the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: Another beautiful song composed by G.S. Kohli sir. Film ka naam tha Namaste Ji, jo 1965 mein aayi thi. वैसे ऐसे गाने आप बहुत सुनते हैं विंटेज कोल में, और सैंडी जी आ रहे हैं मेरे बाद, ऐसे ही गीत आपको सुनवाएंगे ऑल द वे टिल 10 o'clock.

well, जाने को तो दिल मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना होगा क्योंकि सैंडी बिल्कुल तैयार हैं, अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो बता दूं, ये फिल्म यकीन से चुना था मैंने गीत, ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज हुई थी जिसमें शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र ने काम किया था। ब्रिज सदाना ने इसे संगीत पर डायरेक्ट किया था और शंकर जैक्सन का संगीत था। और आपको छोड़े जा रही हूँ प्यार का मौसम का एक प्यारा सा गीत, आपकी नज़र करती हूँ। मेरे पास सैंडी शाह आ रही हैं यहाँ, क्यों ना जाऊँ, जाना है ना। और दूसरी तरफ सोनिया एंड अंकुर होंगे मैनचेस्टर में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखें, उनकी लुक आफ्टर करें। और मुझे इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी जगह। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड इवनिंग।

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Mum always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: Hi, this is Salim.
5: Hi, this is Suleiman.
4: From Salim Suleiman. Keep listening to Royco Radio.
6: This is the Desi Vibe Show with

0: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
0: in Dubai.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
3: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 01163325100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
0: ये है लाइका गोल्ड.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
4: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.